अंदर प्रेरितों का कृत्य. इन द न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्ड्स 1-4 वर्ड्स वी आर रीडिंग इन द हिंदी लैंग्वेज. कलीसिया पर अत्याचार हुआ है, कलीसिया के ऊपर अत्याचार हुआ है, जबकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह स्थापना किया है. द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फाउंडेड द कॉन्ग्रीगेशन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक्लेसिया अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लैंग्वेज. एक्लेसिया कॉल्ड आउट पीपल, कॉल्ड आउट फ्रॉम द डार्कनेस पावर्स ऑफ बॉन्डेज इन टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट किंगडम, एटर्नल किंगडम. अंधकार की शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, भूत प्रेतों का बंधनों से, बांधों से, अंधकार का बांधों से बांधा गया, उसमें से यीशु मसीह प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आके सलीब के ऊपर कुर्बानी होके उनकी महिमा की कुर्बानी से, उनकी महिमा की लहू बहाने से, उनकी अनमोल कीमत की कीमत चुकाने से प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार की, पाप की, नरक की दलदल में से हम लोगों को छुटकारा देके लाया, और लाके यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रभु का, प्यारा पुत्र यीशु मसीह प्रभु का राज्य में हम लोगों को वहां जोड़ दिया है, वहां रखा है इसमें, यानी कि कलीसिया में हम लोगों को रखा है. अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1:13 हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में परमेश्वर ने लाके रखा है, और वो राज्य का कभी अंत नहीं हो सकता. पवित्र बाइबल में हम लोग ये पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16:18-19 में, जो यीशु मसीह प्रभु राज्य स्थापना करते हैं, यानी कि कलीसिया स्थापना करते हैं. कलीसिया और राज्य एक ही है. कलीसिया का मतलब एक जगह में जुड़ गए हुए और एक जगह में एकत्रित होगा हो गया है, उन लोगों को हिंदी में कलीसिया बोलते हैं. लेकिन परमेश्वर ने लोगों को लाके जोड़ने में, उद्धार पाया हुआ लोगों को लाके जोड़ने में, पवित्र विश्वासी लोगों का, द होली पीपल, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द बिलीवर्स, द वर्शिपर्स,

0: इस दुनिया में आके ये कार्य जो किया है, तभी प्रभु यीशु मसीह को सेवियर, इंग्लिश में सेवियर कहते हैं, यानी कि बचाने वाला, यानी कि यीशु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीसस, उद्धार करने वाला, बचाने वाला, जिसको ब्रैकेट में ऐसे बोलते हैं सेवियर, खतरों में से बचाया, मरते मरते हुए उस समय से बचा के जिंदा रख दिया है और हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए बनाया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेवियर। सो प्रियजनों, उस तरह का स्थापना किया हुआ परमेश्वर का योजना के मुताबिक यीशु मसीह प्रभु अपने राज्य में हम सभी लोगों को लाके रखा है, और वो राज्य नाम का जो कलिसिया है, इस कलिसिया को क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 1 में हेडिंग में क्या दिया है, इसमें कलिसिया के ऊपर क्या हो गया है, अत्याचार हो गया है। कलिसिया को स्मैश करने के लिए कोई ताकत, कलिसिया को नष्ट करने के लिए, कलिसिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए द ईविल स्पिरिट, एंटी क्राइस्ट, द अनक्लीन स्पिरिट ट्राइंग एंड गिविंग अस स्ट्रगल्स, the evil spirit has done the destroy activities upon the church. This means कलिसिया पर अत्याचार हो रहा है। प्रियजनों, हम इस वचन में हम ये देखते हैं, the book of Acts chapter 8 verse 1 to 4, I'm reading the word of God, please you read and you see in your holy Bible. उसी दिन यरूशलेम की कलिसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर भीतर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलिसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। चौथा वचन, द स्क्रिप्चर 4, जो थीतर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगे। मसीहा का प्रचार क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। हम प्रभु की स्तुति धन्यवाद करते हैं, कलिसिया के ऊपर अत्याचार हुआ, कलिसिया को नष्ट करने के लिए कार्य शुरू हो गया है, और ये कलिसिया जो तीतर भीतर हुई थी, ये कलिसिया कहां से तीतर भीतर हुई थी, ये कलिसिया कहां की थी, द चर्च फाउंडेड, द चर्च न्यूली बर्न, नए सिरे से नया नया स्थापना हुआ, ये कलिसिया कहां स्थापना हुई थी, पवित्र बाइबल बताता है यरूशलेम, द ग्रेटर सिटी ऑफ द जेरूसलेम, द चर्च हैज बोर्न। पवित्र महिमा की प्रभु परमेश्वर की कलिसिया जो है यरूशलेम में स्थापना किया गया है। पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरने के बाद में प्रेरितों का कृतिचार दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 टू 6 8 वर्स अप टू व्हेन वी आर रीडिंग द होली बाइबल सेइंग, द होली स्क्रिप्चर स्पीकिंग टीचिंग अस दिस मच व्हाट द होली स्पिरिट एंड द होली स्क्रिप्चर सेइंग, द होली स्क्रिप्चर टीचिंग टू all of us and all to the nations, all to the congregations, and all to the denominational organizations. This is the scripture saying, the Holy Spirit dwelling upon the only 12 apostles, not upon the 120, the 120 members will get together if they're at one place. Those all the 120 praying believers, those were not receiving the Holy Spirit at that time. At that time, the Holy Spirit received, apostles received the Holy Spirit, only 12 apostles only. This is the Holy Scripture saying, Pavitra Atma, कितने लोग वहाँ हासिल किया है वो बात वहाँ खुलासा हो रहा, बात ध्यान देने की है, बात बड़ी गंभीरता का। जब हम वहाँ पढ़ते हैं पवित्र बाइबल का वचन, हम सुनते हैं, यहाँ पवित्र आत्मा वचन के जरिए हमसे बातें करता है, सिखाता है, द टीचिंग्स, द होली स्पिरिट, द होली स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स क्या बताते हैं, आप निकाल के लीजिए। प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय में से, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1-8 जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन हम पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं हिंदी में। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन, हाँ यस,
1: परंतु
0: जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
1: तब तुम सामर्थ पाओगे
0: और यरूशलेम और सारे यहूदिया
1: और
0: सामरिया में
1: और
0: पृथ्वी की छोर तक
1: मेरे
0: गवाही होंगे। यीशु मसीह प्रभु का ये आदेश, यीशु मसीह प्रभु का आदेश, ये सुसमाचार आप लेकर के जाएंगे। That you have to go to there and you have to spread the gospel and you have to teach and preach the gospel to where the scripture say. The Holy Spirit, when you will going to receive the Holy Spirit, 8 verse saying, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आने के बाद आपके ऊपर, when you are going to after some hours at the time of the Lord Jesus Christ commanding to them apostles, कुछ घंटों के बाद अब क्या होने वाला है, अब ये हो रहा है, यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद में, यीशु क्रिस्त प्रभु गोलगोता पहाड़ के ऊपर दो चोरों के बीच में, दो अपराधियों के बीच में, दो पापियों के बीच में यीशु मसीह प्रभु सलीब के कुर्बानी पूरा किया है, ताड़ना दर्द दुख उठाए हैं और उसके बाद प्राण दे दिया है, यानी कि वो मर गए हैं। और यीशु मसीह प्रभु को पहले जैसा बताया है भविष्यवाणी में, वैसे समाधि की गया है, समाधि में से फिर शुक्रवार को ये घटना घटी थी कुर्बानी की, एट द डे ऑफ फ्राइडे, इट मीन्स बिफोर रिजरेक्शन डे, थर्ड डे बिफोर रिजरेक्शन डे, इट मीन्स वी हैव टू गो टू बैक साइड। Sunday is the resurrection day. Before that, Saturday. And Saturday before that, Friday. जब शुक्रवार को यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर कुर्बानी हुआ, और सलीब के ऊपर यीशु मसीह प्रभु आदम से लेकर हर कोई मनुष्यों की मनुष्य जाति का हर कोई युगों में जन्म लिया हुआ मनुष्यों का और आने वाले आखिरी आत्मा तक पूरा होने वाला पाप की क्षमा मिलने वाली कुर्बानी यीशु मसीह प्रभु पूरा किया है, प्राण दे दिया, समाधि की गया, तीसरा दिन जी उठा, शुक्रवार से लेकर तीसरा दिन, शुक्रवार को भी समाधि में था यीशु मसीह प्रभु, पवित्र बाइबल बताता है, शनिवार को भी समाधि में था यीशु मसीह प्रभु, शनिवार के दूसरा दिन जो है, शनिवार का दूसरा दिन जो है संडे, इंग्लिश में संडे बोलते हैं और हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं रविवार का दिन, इतवार का दिन, ये लिखा है प्रेरितों का 20वां अध्याय 7वां वचन में, द स्क्रिप्चर्स क्लैरिफिकेशन मेंशन्ड इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7 व्हेन वी आर गोइंग टू रीड। सो प्रियजनों, हम ये वचन में ये पढ़ते हैं यीशु मसीह प्रभु के कुर्बानी होने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन 40 डेज स्पेंड हिज प्रेजेंस विद सेलेक्टेड अपोस्टल्स। यीशु मसीह प्रभु उसने जो तय किया है, यीशु मसीह प्रभु जिनको सेलेक्ट किया है अपोस्टल्स बन के रहने के लिए, और उनको यीशु मसीह प्रभु उनके साथ में एपोस्टल से साथ में यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद, तीसरा दिन रिसोरेक्शन होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद में यीशु ख्रिस्त प्रभु 40 दिन 40 रात उस एपोस्टल्स के साथ में, उस प्रेरितों के साथ में रहा करते थे, और वो एपोस्टल्स जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, उनका ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह प्रभु के साथ में वे लोग रहे 3.5 साल। प्रेरितों ने यीशु ख्रिस्त प्रभु के साथ में रहे, यीशु मसीह प्रभु को परखे थे वो लोग, यीशु ख्रिस्त प्रभु के घावों में उंगलियां, हाथ, अपने हाथ डाल के, अपनी उंगलियां डाल के वे लोग ने ख्रिस्त यीशु प्रभु को परख लिया है, जिसको आजकल की हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते स्कैंड, जिसको स्कैन किया है। अभी क्या करते हैं, वही आदमी है क्या, स्कैन करते हैं। हमको बोलने दीजिए, बिफोर 15 इयर्स बिफोर द कंट्री ऑफ द इराक, सद्दाम हुसैन जी को 28 कंट्रीज ने वो लोग ने पकड़े, ये इतिहास है, बोलने के लिए कोई अर्ज नहीं है, वी कैन रिमाइंडिंग दिस थिंग। उस इराक के देश के, द कंट्री ऑफ द इराक CID टीम, अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, वे लोग ने सद्दाम हुसैन जी को जिंदा पकड़ने के बाद में आरोपी बना के उनको क्या किया है, स्कैम किया है। दिस इज द रियल फैक्ट इन आवर जनरेशन, स्कैम किया है। इज ही द सेम सद्दाम हुसैन और नॉट, क्योंकि उनकी सद्दाम हुसैन साहब जी की, उनके जैसे और भी 10-15 सद्दाम हुसैन लोगों को वे लोगों ने डुप्लीकेट बना के रखे थे, ऐसा 28 कंट्रीज, यूनाइटेड कंट्रीज 28 कंट्रीज लीडिंग एंड लीड बाय द USA गवर्नमेंट, वे लोगों का ये डिसीजन है, ये लोगों का रिजोल्यूशन है कि स्कैन हिम, इज ही ओरिजिनल सद्दाम हुसैन आर नॉट, ये वही है क्या। फिर स्कैन क्या किया वे लोग ने, उनकी दांत पहले कितने थे, कितना दांत निकल गए थे, दांत बराबर वो वही है क्या, दांत को सर्च किए थे, उनकी बालों को सर्च किए थे, उनकी जबान, उनकी शरीर, इज इट रियल सद्दाम हुसैन आर नॉट। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं प्रियजनों। beloved brothers and sisters, that we have to understand the scriptures. Is that Lord Jesus Christ is same Lord Jesus Christ, or other any person looking as Lord Jesus Christ? This we have to confirm. This we have to scan, research. इस तरह से वे लोगों का कोशिश था कि यीशु मसीह प्रभु ये वही है या नहीं है, कि उनके जैसा और कोई तो नहीं, ऐसा उनका परखने से उनकी मकसद थी। हम सीखने के लिए कलिसिया में, हमको टीचिंग करने के लिए कलिसिया में, लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए ये बात हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। आज की 2026 साल पहले यरूशलेम देश में जब इस तरह से रविवार का दिन आई थी, मैथ्यू चैप्टर 28 27 में भी वे लोग उस समय के राजा हेरोद उनके सेनाओं को और धर्मशास्त्र के सुबहदार लोगों के लिए द लॉ ऑफ मोसेस ऑफिसर्स उन लोगों को डर के मारे ये अपोस्टल्स जो है वे छिपे हुए कोई कमरे में दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह प्रभु उनके बीच में आ गए। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रेजेंस हैज इन बिटवीन देम अपोस्टल्स द स्क्रिप्चर सेइंग एट द टाइम उस समय एक संडे में जैसे यीशु मसीह प्रभु उनके बीच में आए, एट द टाइम द एपोस्टल थोमा वॉज नॉट देयर, ही वॉज एब्सेंट, एंड आफ्टर दैट द एपोस्टल्स गिविंग हिम टू थोमा, यस वी आर discovered the Lord Jesus Christ again. हमने यीशु मसीह प्रभु को मरने के समय में से या समाधि में से तीसरा दिन जैसा पहले जिंदा था वैसे उसके बाद हमने यीशु मसीह प्रभु को हासिल किया, प्राप्त किया हम लोगों ने। थोमा बताया कि नो, what you are saying? Your testimony and your witnesses may be false. I'm not going to accept your testimony. तुम्हारा जो गवाही है हम स्वीकारते नहीं है। कौन बोलते हैं? तोमा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तोमा, अपोस्टल तोमा, अपोस्टल तोमा। जब भी यीशु मसीह प्रभु का चेहरों का नाम लेते हैं उनका पहले नाम लेने से पहले अपोस्टल तोमा बोलना पड़ेगा, अपोस्टल पीटर बोलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु ने उनको सेलेक्ट किया, नियुक्त किया, उनका नाम रखा है, उनका नाम एपोस्टल। आजकल तो ऐसे भी बहुत से लोग अपने आप का नाम का बाजू में अपोस्टल लगा देते, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यीशु मसीह प्रभु आज के 2026 साल पहले अपने चेलों को सेलेक्ट किया, उनका नाम एपोस्टल रखा था, ये पवित्र बाइबल में डॉक्यूमेंट है, पवित्र बाइबल एविडेंस है। उनको छोड़ के और कोई अपोस्टल नहीं हो सकता। प्रियजन, ये बहुत बड़ी ये समझाने की बहुत बड़ी ये लंबा टीचिंग है। इट विल टेक मच मोर टाइम, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट एक्सप्लेनेशंस। पर एक ही बात है, उस समय के जो अपोस्टल है जो यीशु मसीह प्रभु ने सेलेक्ट किया, नियुक्त किया, उनका नाम रखा है अपोस्टल यानी कि प्रेरित, और उनको अपने साथ में लिए, उसी तरह से 40 यीशु मसीह प्रभु समाधि से रिजोरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह प्रभु उन अपोस्टलों के साथ में 40 दिन 40 रात बिताए थे। उनके साथ वो लोग जो खाते थे वो खाया, उनके साथ में सोया, और सभी अपोस्टल लोग ने उनको परखा। What does this mean? What is the necessary to spend the 40 days with the apostles? Is that very important, necessary? क्या साबित करना चाहते हैं apostles? यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद में अपने साथ में रखे, कि यीशु मसीह प्रभु क्या ये साबित करना चाहते हैं कि 40 दिन अपोस्टल के साथ में रहने के लिए, जैसा आपका प्रोफेसी पूरा हो गया है, 40 दिन आप अपोस्टल के साथ में रहते हैं पुनरुत्थान के बाद में, समाधि के बाद में, फिर से जिंदा होने के बाद में, जैसा आप बोलते हैं पिता का पास जाना है तो जाना चाहिए था। वही आर स्पेंडिंग 40 डेज विद अपोस्टल्स, दिस इज द क्वेश्चन अराइजिंग। तो वो इसलिए था पवित्र बाइबल में यीशु मसीह प्रभु को समाधि में रखने के बाद में उनको जंजीरों से समाधि का पत्थर जो ढाक के रखा है, ढाक कवर समाधि को, वो छठान को छीन के उसको एक होल करके वे लोग रखते हैं। अरमथाई योसेफ, जोसेफ अरमथाई उनका था, और यीशु मसीह प्रभु को उनकी छील के रखा हुआ, पहले से तैयार किया हुआ समाधि में रखा, ये हम लोगों को मालूम है, ये स्क्रिप्चर में है। ये सब बातें बताने के लिए समय कम ज्यादा लेता है, इसलिए हम शॉर्टली ये पूरा करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु को उस अरमथाई जोसेफ के समाधि में रखने के बाद में धर्मशास्त्र के अधिकारी या सुबहदार लोग जो है, द ऑफिसर्स एंड जूस लॉ प्रोटेक्टर्स, यहूदियों की धर्मशास्त्र का रखवाला, बात को ऐसा बताने से समझ में आता है, यहूदियों की धर्मशास्त्र मतलब क्या है, व्हाट इज द यहूदियों की धर्मशास्त्र मींस द लॉ ऑफ मोसेस, द लॉ ऑफ मूसा के जरिए परमेश्वर ने दिया हुआ धर्मशास्त्र जो होते हैं उसके रखवाला हम करते हैं, वही सही धर्मशास्त्र है दुनिया में, उसके अलावा और कोई भी किताब आसमान से नहीं आया। यदि अगर ऐसा आया करके कोई बोलते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको कबूल नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा मूसा अलैहि सलाम जी जो लेके आए हैं आपके लोगों की, आपके युग के लोगों के बोलने की मतलब है। हाँ साहब जी आप बोलो, मुसाले वाले सलाम जो लेके आए हैं लॉ या कानून या आसमानी किताब, आसमानी कानून, खुदा का फरमाया हुआ, सही बात है, नो डाउट। उस कानून का रखवाला करने के लिए वी आर द ऑफिसर्स इस यहूदियों के बीच में। यहूदी का ये टोटल मीनिंग होता है इज़राइल डिस, 12 घरानों के इज़राइल की, इज़राइल लोगों के लिए दिया गया, 12 घराना लोगों को उसको मान कर चलने के लिए, थोड़ा इधर उधर ना जाने के लिए, यदि ऐसा करते हैं तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा, तुमको सजा मिलेगी, सीधा मार डालने की सजा, चौकों में खड़ा करके, चौकी में खड़ा करके मार डालेंगे, पत्थर से मार डालेंगे, ऐसा मूसा ने फरमाया है, कानून दिया, नो नीड टू गो टू द जजेस, हम अपमान नहीं करते हैं, ऑनरेबल जजेस के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा उनके कहने का मतलब, वैसा धर्मशास्त्र में वैसा दिया गया है, दैट इज करेक्ट, नो डाउट। पर यहां ऑफिसर्स, ये जो अधिकारी है धर्मशास्त्र का अधिकारी, ये बात हम प्रभु के पवित्र बाइबल में से बात करते हैं, आज की 2026 साल पहले की, उस समय की बात है। उस समय यहूदियों की धर्मशास्त्र का अधिकारियों ने आके यीशु मसीह प्रभु के कब्र के ऊपर जो ढाक के रखे थे, कब्र में यीशु मसीह प्रभु का, कब्र में यीशु मसीह प्रभु का देह रखे थे, उसके बाद में ये पत्थर से बनाया हुआ एक ढक्कन जिसको कहते हैं इंग्लिश में कवर कहते हैं, कवर ऑफ द बरियल, उस समाधि के ऊपर जो कवर करके ढाक के रखा था। फिर वो ऑफिसर्स, यहूदियों के ऑफिसर्स आके ये बताए कि राजा हेरोदस को परमिशन लिया है, सी लॉर्ड किंग जो हेरोदस प्रोवाइडेड द परमिशन, सम सोल्जर्स मस्ट बी देयर टू वॉचमैन। वहां यीशु जो है जब जिंदा था ये फरमाया था, मैं मरने के बाद में तीसरा दिन उठेंगे, जिंदा होएंगे, ऐसा बताए थे वो, कि भाई ऐसा तो नहीं होएंगे, फिर वो जिंदा तो नहीं होएंगे। राजा हेरोद जी, हम यहूदियों की धर्मशास्त्र के अधिकारियों बात करते हैं, हम आपसे परवानगी लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि आप ये हुक्म करो कि कहीं सिपाहियों को वहां रखो, ताकि इसलिए कि वो जिंदा तो होएगा नहीं, तो इसलिए वहां सिपाहियों को रखना चाहिए कि वो जो समाधि के ऊपर का जो ढका हुआ उस पत्थर, वजन का पत्थर जो है, वैसे तो कोई दो चार आदमी उठा नहीं सकता, इतना बोझा वजन रहता है, तो उसको यीशु मसीह प्रभु का चेले जो आएंगे और उनकी उनकी फॉलोअर्स भी आएंगे और उनको ये बोलेंगे कि यीशु मसीह प्रभु का लाश को हम लोग लेके जाते हैं और उस लाश को हम छिपा के रख देंगे और देखो बोलेंगे ये देखो कब्र खाली है, यीशु मसीह प्रभु का देह कब्र में नहीं है। इसका मतलब जैसा प्रभु पहले बताया वैसा प्रभु हमारा उठ गया है, ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह प्रभु के चेलों में। इसलिए ऐसा वो काम ना हो कि उनकी लाश को उनके चेले और उनके फॉलोअर्स उनकी अगुवाई लोगों का आके चोरी करके लेके जाएंगे और इस तरह से बोलेंगे फिर हमारा अपमान होएंगे। इसलिए वहां सिपाहियों को रखो, वहां जंजीरों से बांध के रखो। ये सारी व्यवस्था करने के बाद भी वहां वो पत्थर भी हट गए, वहां सिपाही लोग जो है वो बेहोश होके गिर गए थे और यीशु मसीह प्रभु समाधि में से जिंदा हुआ और स्वर्ग से दूत परमेश्वर ने भेजा है, खुदा ने दो स्वर्ग दूतों को भेजा है जाके ये विटनेस लोगों को बताओ, और खुदा ने भेजा हुआ वो स्वर्ग दूत जो है वो कब्र में आके बैठे और पहला स्त्री आके कब्र को लंबे से देखा और जाके प्रेरितों को बताया, प्रेरित आके और समाधि में गुफा के अंदर जाके वो लोग अंदर जाके वो कपड़ा वपड़ा देखा, यीशु मसीह प्रभु का शरीर उसमें बॉडी नहीं मिली। फिर क्या मिला, वहां दो स्वर्ग दो तो आके बता रहे कि जिंदा हुआ प्रभु यीशु मसीह को, जीवते जिंदा प्रभु को तू मुर्दों में कब्रों में क्यों ढूंढ रहे हो, दैट यू डोंट नो, दैट यू डोंट हैव रिमाइंडिंग दिस थिंग। ही सेड बिफोर, पहले से उसने बताया था हम मरने के बाद में लोगों के लिए कुर्बानी होएंगे, प्राण देंगे, समाधि किए जाएंगे, तीसरा दिन में जी उठेंगे, ये बात क्या तुमको याद नहीं है, ऐसा स्वर्गदूतों ने बताया। क्यों तुम जिंदा प्रभु को तुम कब्र में देखते हैं, कब्र में क्यों ढूंढ रहे हो। फिर वे लोग ने दौड़ के बाहर चले गए, यानी कि यीशु मसीह प्रभु ये साबित हो गया कि वो जिंदा हो गया है, मृत्यु से जिंदा हो गया, मृत्यु की ताकत को हरा दिया, मृत्यु की ताकत का सिर को तोड़ दिया यीशु मसीह प्रभु और पुनरुत्थान हो गया है, यानी कि शैतान का ताकत वहां कुचला गया है। फिर भी अभी हम ये नहीं बोलना चाहिए कि शैतान आके हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या तो हमको दबाएंगे कोई जादू टोने के जैसा, यीशु मसीह प्रभु का नाम लेने से भूत प्रेत का ताकत जो है नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु उनके सिर को कुचाल दिया है। सिर को क्या किया है, सिर को कुचाल दिया, यानी कि पावर को ब्लास्ट कर दिया यीशु मसीह, नाकाम कर दिया। ये सुसमाचार है, यदि कोई विश्वास करते हैं आपकी क्षमा यीशु मसीह प्रभु के नाम से कुर्बानी में हो जाता है, इसे विश्वास करते हैं आपका भी उद्धार हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 टू 16, यदि कोई विश्वास करते हैं वो बपतिस्मा लेते हैं वो बच जाएंगे, ही कैन सेव आफ्टर द बैप्टिज्म, व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू कैन एक्सेप्ट दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय पर्सनल सेवियर, that you have to repent in your mind according to the book of Rome chapter 10 verse 9 and 10। यदि ऐसा विश्वास करते मन में विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं, आप बपतिस्म लेते हैं, आप बच जाएंगे, नरक में से बचेंगे, अनंत काल का जीवन का वारस बनेंगे। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार, यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 8 वचन में बोलते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, when you will receive the Holy Ghost, when you will receive the Holy Spirit, after that, what you can do, what your duty, this is your duty, this is not Jesus, great commission. ये बोलते हैं यीशु मसीह प्रभु, the book of Acts chapter 1 verse 8 में, जब पवित्र आत्मा आप हासिल करने के बाद में, वो तुम कहां जाएंगे, सामर्थ होंगे, and you can become strong, with the Holy Ghost, you can become with the strong, with the scriptures mind, wisdom mind, Holy Spirit talents, when you will receive the Holy Spirit. यीशु मसीह प्रभु वो ये 12 चेलों को बताए थे, ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात या क्लैरिटी हो रहा है कि जब ये प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को बोलते हैं, कि आप पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे। वहां अभी प्रेरितों का वृत्त दूसरा अध्याय में और 120 लोग वहां एकत्रित हुआ है, जैसा कि पहला अध्याय का आखिरी भाग में बताते हैं, जैसा प्रेरितों का पहला अध्याय 26 वचन में बताया, तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली थी और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों का साथ गिना गया था। और उसके साथ में यही स्क्रिप्चर में थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं तो 120 लोग यहाँ एकत्रित थे इनके साथ में। कितने लोग थे? 120। यीशु मसीह प्रभु इन 12 को बोलते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे। यीशु मसीह प्रभु जैसा बोलते हैं वैसा पवित्र आत्मा द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 में इन्हीं के ऊपर आए थे। और बाकी लोग ये बोलते हैं कि देखो तुम लोग जो है, तुम यानी कि यू आर द 12 अपोस्टल्स स्पीकिंग, यू आर द 12 अपोस्टल्स सेइंग दैट अननोन टंग्स। ये जो टंग्स जो बोलते हैं, अलग अलग भाषा में जो बातें करते हैं, ये आप बात करते हैं, 120 आदमी बात नहीं करते हैं। और अब क्या विश्वास करते हैं कुछ लोग, 120 लोगों के ऊपर भी आया उस समय, आया 2026 साल पहले, आज भी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया। पास्टर जी बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं, तुमको ये होने वाले बच्चे नहीं, को बच्चा हो जाएंगे, प्रोफेसी करेंगे पवित्र आत्मा। नो, विच इज द प्रोफेसी, गॉड हैज मेड द प्रोफेसी, दैट प्रोफेसी हैज ऑलरेडी फुलफिल्ड। पवित्र आत्मा आया, वो पूरा हो गया है, उनके ऊपर आया। अब पवित्र आत्मा जो कोई वचन पढ़ते हैं हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेंगे, अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, हमारा साथ में पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट एक्टिविटीज इन बिटवीन अस इन आवर लाइव्स व्हेन वी आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर, बाइबल होली स्क्रिप्चर्स जब हम फॉलो करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हम लोगों को अगुवाई करेंगे। लेकिन बार बार पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर और तुम अद्भुत कार्य करेंगे, फिर टंग्स में बात करेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, उसके बाद वो अन्य भाषा बंद होने के बाद पवित्र आत्मा चला जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसा क्रिया नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हमारे साथ में हमेशा के लिए रहेंगे, अनंत काल का जीवन में जल लेके जाने के लिए रहेंगे। कब रहेंगे? जब हम प्रभु के वचन के अंदर रहेंगे, जब हम प्रभु के अंदर रहेंगे, मसीह कलीसिया में रहेंगे। इस तरह का जो ये प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति जो है, प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन में बताया, तुम पवित्र आत्मा मिलने के बाद में क्या करेंगे? आप सामर्थ होंगे, उसके बाद में और यरूशलेम में आप गवाही देंगे और सारी यहूदिया में गवाही देंगे और सामरिया में गवाही देंगे। सामरिया के बाद में क्या लिखा है? पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही को क्या करेंगे? लेके जाएंगे, ये लोग लेके जाएंगे। यदि प्रेरितों के जरिए ये सुसमाचार प्रचार किया गया है और प्रेरितों ने और या वहां सुसमाचार प्रचार करने के बाद में जो लोग रिपेंटेंस किया है, बापतिस्मा लिया, 3000 लोग, ये 3000 लोग जो बांधा गया कलीसिया यीशु मसीह प्रभु का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया स्थापना किया गया, उस कलीसिया का ऊपर जो है क्या आ गया है, कलीसिया के ऊपर क्या आया है, क्या नहीं, कलीसिया के ऊपर क्या आया है, 8 अध्याय में हम लोगों ने पढ़े थे, 8 अध्याय में कलीसिया के ऊपर क्या आया, अत्याचार आया, अत्याचार। तो कलीसिया जो उनके ऊपर अत्याचार आने के बाद में, यानी कि उनको सताए जाने के बाद में, उनके मारने के बाद में, उनको तलवार से काटने के बाद में, हंटरों से, कोड़ों से मारने के बाद में, जेल में डालने के बाद में, कलीसिया इधर उधर थीतर भीतर हो गया। और थीतर भीतर हो गया उस तक एट दट सिचुएशन क्या हुआ, उस तीतर भीतर हो गए वो लोग, कोई अलग अलग जगह में चले गए हैं, कपदोकिया, मेसोपोटामिया और इधर उधर और यरूशलेम के अलग अलग जगह में चले जाने के बाद में, जहां जहां वो लोग गए थे वहां वहां वो लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए, वे लोग ने वैसा हम लोगों ने पढ़े थे 6वां वचन में पढ़े थे, 4 वचन के 5 वचन में, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगे। 4 वचन बोलते हैं, जब वो लोग थीतर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो लोग थीतर भीतर हो गया था, हाँ बाबा हमको वहां उस वो लोग ने मारा, वहां हम लोग रहने नहीं दिया, फिर हम यहाँ आए, यहाँ आके क्या करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ क्या करते रहेंगे, सुसमाचार प्रचार करता रहेंगे और सुसमाचार प्रचार करता हुआ फिरेंगे। दिस इज एम ऑफ आवर लाइफ, दिस इज एम ऑफ, दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवर चर्च, दिस इज ड्यूटी ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इस तरह से वे लोग ने प्रभु यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता हुआ अनंत काल के अंदर लोगों की आत्मा पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद दे, सभी लोग हम आमीन बोलते हैं।

आज मैं एक ऐसी मानसिक यात्रा का जिक्र करना चाहता हूं जो मैं करीब पिछले 30-40 साल से महसूस किया था कि कभी मैं इसको पेन डाउन करूंगा, लेकिन वो तो बाद की बात है। लेकिन आज मैं इसको एक अभिव्यक्ति के तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली में 1992 में आया, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, आर्थिक रिफॉर्म चल रहे थे, बहुत सारे इशू चल रहे थे, और नरसिम्हा राव सरकार ने अपना 5 साल का जो कार्यकाल पूरा कर लिया, इसके बाद दोबारा चुनाव आया तो कोलिशन गवर्नमेंट, जब कोलिशन गवर्नमेंट आई तो मुझे लगता था कि ये कोलिशन गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक कंपल्सन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अलायंसेस, जुडिशरी, मीडिया सरकार को एकदम जकड़ लेते हैं, सरकार कुछ कर नहीं पाती है। तो ये कोलिशन का इरा चलता रहा, इसके बाद गवर्नमेंट्स गिरी छोटे छोटे मुद्दों को लेके, इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई वाजपेयी जी की, और फिर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी मोर आर लेस एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन कोई खास कंपल्सन नहीं हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया होते होते 2004 के बाद जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो कोलिशन गवर्नमेंट से सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, और उस समय साफ साफ महसूस होने लगा कि कोलिशन गवर्नमेंट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसा उस समय महसूस होता था, जो कि बाद में मुझे लगा कि मैं उस समय गलत था। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी दिल्ली वासियों को याद है कि जब दिल्ली में कमर्शियल प्रॉपर्टी सील होने लगी थी, दुनिया भर की कमेटी, कभी भूरे लाल कमेटी, कभी ये कमेटी, और सबको पता है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी सील हो रही थी हमारे बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय, जस्टिस सबरवाल और जस्टिस जैन, शायद वो नहीं रहे, लेकिन सबको मार्केट में एक खबर थी कि क्यों सील हो रहा है, उससे किसको फ़ायदा होगा, और सरकार हेल्पलेस होके देखती रही। उस समय लगता था, मैं ही कई बार बात करता था कि इंडिया में जुडिशियोक्रेसी आ गई है क्या, हर चीज़ का जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, और सरकार को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया गया। तो जब ये कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो ये